अर्जन हर गोविंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निध आवै ताए। सब थाई हुए सहाए दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुए सहाए दसां पातशाहियां दी जोत श्री।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निरपव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंगुर प्रसाद चक्र चिहन अरवरण जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख भेख कह न सकत केहे अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अमतोज कह जाय कोट इंद्र इंद्रान सह सहान गणिजय त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत वन तृण कहत त्वा सर्वनाम कथा कवन कर्म नाम वर्णत समत जब लो नहीं भाग लिला रोदय तब लो भ्रमते फिरते बहतायो कल कोर समुंदर में भूडत थी कब हमट है नहीं रे पछतायो तत् विचार जह मथुरा जग तारण कौ अवतार बनायो जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो सतगुरु आयो शरण तुहारी मिला सुख नाम हर सुबह चिंता लाहे हमारी अवरण सूजा दूजी ठार हार पर्योता द्वारी लेखा छोड़ लेखा छूट है हम निर्गुण लेहो उबारी साधु बख्शेंदु सदा मेहरबाना सबना दे आधारी नानक दा संत पाछ परयो राख लिहो एहो बारी सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख होवै सिफत खसाम नूर अरसह कुरसह तदृठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी सजन सचा पातशाह सिर साहांद जिस पास बैठिया सोइया सबना दा सजन सचा पातशाह सिर साहांद जिस पास बैठे

प्रांगन एक ना जापन करतबा जी अंदर जी सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे वस तेरा घर भला एरे घर आनंद वधाई तुद घर मान मत तेरे अपना आप जर।

चित्त आवन का सबका सर्व सुख हो वे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रखे आरे आए तो देव देव फत हे विरद की पैर पंथ की जीत श्री साहिब की सहाय खालसे जी।

0: गुर नव निध दरियाओ जन्म हम कालक धोवै सुख हो टल गुर सेवियै एहनस सहज सुपाए दर्शन परसियै गुरु कै जन्म मरन दुख जाए।
1: धन धन श्री गुरु रामदास जियो महाराज।

बलहारी कुदरत वस्या तिरंत न जाय लख्या रहाओ। जात में जोत जोत में जाता अकल कला परपूरहा। तू सच्चा साहिब सिफ स्वाल्यो जिनकी तीसो पार पया। कहो नानक करते किया बता

बोलो जे जिन्ना सिंगा सिंगनिया ने धर्म हेत सीस दत्ते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरद्वारिया दे सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सुवासा नाल निभाही तिना दी कमाई दा त्यान तार के खालसा जी बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान तार के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत

पाप करे कर मुकर पावे। भीख करे निर्बन जतन करे मनुख डहकावे। ओहो अंतर जामी जाने पाप करे कर मुकर पावे। भीख करे निर्बन जानत दूर तुम्हें प्रभ नेर। उत ताकै उत ते उत पीखै

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत षाड बिख बिख खाई, माया मोह परम पै पूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास रख हो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास रख हो सरनाई। सुकहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दी, नूर अर सह कुर सह चटिया, तुद डिठे सच्चे पातिसा, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पाते साहो सिर साहां दैसा, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसा। सज्जन सच्चा पाते साहो सिर साहां दैसा, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसा। सत

0: उडुड़ावा झाटे पाए वेखे लोग सेकर जाए रोटियां कान पूरे ताल आप साढ़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपन निरंकार सच नाम जागा किया सगल जहान सेवक सेवे कर्म चढ़ाओ पिनी रंजना मंचाओ सिखी सिख्या गुरु विचार नदरी करम गाए पार कोलू चरखा चक्की चक फल बरोले बहुत अनंत
1: लाटू माधाणियां गा पंखी पौंदियां लैन साहब सूए चढ़ पोए जंत नानक पौंदियां गणतनां बंधन बंद पुआए सोए पए कतन चे सब कोए नच नच हसे चले से रोए उडना जाई सिद्ध ना होए नचन कुदन मन काचा नानक जिन मन भाओ ते ना मन भाओ पौड़ी ना उतर निरंकार है नाय लय है
0: नरक न जाइए जीव सब सदा देखा जाए आख गुहाइए जलोड़े चंगा अपना कर पुन्नो नीच सदाइए जे दरवा

लख सूरतन संग्राम रण में छुट्टे प्राण लख सुरती लग ज्ञान ज्ञान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया आवन जान नानक मत्ती मुथिया कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा साहब एक जिन सचो सच बरताया जिस दुख मिले सच तातनी सच कमाय सदगुण ले सच पाया जिन के हृदय सच बसाया।

कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ मारी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपा पार।

दान महंडा तरी खाक जे मिले ता मस्त कलाइए पूरा लाल छडिया है इकमन अलख ते आइए फालते वे हो पाइए जे वे ही कार कमाइए जे होवे पूर्व लिख्या ता धूर्त ना दी पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए मत थोड़ी।

पंच भूत एक कार राख ले समाज जग जीतो गुरुद्वार खेला संत सार राथ उन मन लिव राख निरंकार कहो कीरत काल सहार।

0: चित चित वो अरदास कहो पर कह पे ना सको सर्ब चिंत तुझ पास साध संगत हो तको तेरा हुक्म पवे निशान तो करो साहिब की सेवा जब गुर देखे शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो फुरमाव है सो कहो गुरे अमरदास कारण करण जिव तू रख तिव रहो।
1: जाको मुन ध्यान धारे फेरत सकल जोग कबहु को पावे आत्म परगास को वेद बाणी सहित बेरंच जस गावे जाको शिव मुन गह ना तो जात का बलास को जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा झूठ भेख किए फेरत उदास को सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बधाई दई गो।

एहनिस सहज सो भई दर्शन परसै गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसमदि नूर अर सोह कुरसोह चटिया तुद डठे सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी सज्जन सच्चा पातशाह हो सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे साहो सज्जन सच्चा पातशाह हो सिर शाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दा सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी आसा श्री कबीर जियो के ते पद अठ दो तुक सत एक तुका एक एक ओ अंकार सत गुर प्रसाद

बारकत बिरद पाया होना सो होया जा जम आए चोट पकड़ तब है काहे जीवन की आस करह जाम निहार सासा बाजी गरी संसार कबीरा चेत टाल पासा जीवन की आस करह जाम निहार सासा बाजी गरी संसार कबीरा

0: खुदा ये लोह भया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमर किया
1: चारे बेर होए सचार।